0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

मॉर्निंग दोस्तों, आरजे अदनान आपके साथ और वक्त हो चुका है एग्जैक्टली 7:41 का। और इस वक्त ना तो हम हर दिन एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिससे आपकी जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी थोड़ा सा परिवर्तन आए। स्वामी विवेकानंद जी से जिंदगी से रिलेटेड ये कहानी है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक गांव में प्रवचन देने गए। एक लड़का उनके पास आया और कहा, स्वामी जी मैं खुश नहीं रह पाता, कभी भी मन दुखी रहता है, कभी बेचैन रहता है, तो क्या करूं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह आओ और एक पत्थर साथ लेकर आना। अगले दिन युवक पत्थर लेकर आया। स्वामी जी बोले, इस पत्थर को अपने सिर पर रख लो और पूरे गांव में घूमो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में वो थक गया, पसीना आ गया, गर्दन दुखने लगी। जब वो लौटा, स्वामी जी ने पूछा, कैसा लग रहा है? वो लड़के ने कहा, बहुत भारी लग रहा है स्वामी जी, अब तो सिर फटने को आ चुका है। स्वामी विवेकानंद जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल वैसा ही हाल तुम्हारे मन का है। जब तुम पुरानी बातों को लेकर चलते हो, दूसरों की तुलना करते हो, या जब तुम किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कोसते हो। दोस्त, खुशी तो तभी मिलेंगी जब तुम बोझ नीचे रख दोगे। सच ही कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, असली खुशी बाहर नहीं अपने अंदर है, हमारे नजरिए में, हमारे हल्के हो जाने में। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, खुश रहना है तो अपने मन को हल्का रखो, बड़े सपने देखो, लेकिन छोटे पलों में भी मुस्कुराना मत भूलो। आप भी ये चीज याद रखिएगा और अपनी जिंदगी में मुस्कान बरकरार रखिएगा। और सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, ऑल इज वेल। और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि ऑफिस का वर्कलोड और डेडलाइन मेंटल हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट डालती है?
1: बेसिकली हम जब बोलते हैं डेडलाइंस, तो जैसे ही डेडलाइंस हम सुनते हैं, हमारे मन में फाइट या फ्लाइट रिस्पांस जो है वो ट्रिगर होता है। अब जैसे ही ये रिस्पांस ट्रिगर होता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर होता है, उसे वो स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाता है। जब ये स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई रहता है तो फिर हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे भूल जाना, गुस्से में आना, और फिर इमोशनल एग्जॉशन भी बहुत होता है कि बार बार रोना आ जाना, है ना, हम उसको इमोशनल आउटबर्स्ट्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें वर्कलोड और डेडलाइंस की वजह से होती है मोस्टली।
0: तो ऑफिस का वर्कलोड और डेडलाइन मेंटल हेल्थ पर किस तरीके से असर होता है इन सब चीजों का, और ये कितने डेंजरस चीजें हैं, तो इसी पर मैम ने अभी हमें इम्पोर्टेंट बातें बताई। तो दोस्तों, इस वक्त हम हर दिन ऐसे अपने मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट वाले मेंटल हेल्थ की। आपके भी मन में कुछ सवाल हो तो आप हमें बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। मेंटल हेल्थ को वेल रखिए, जिंदगी ऑल इज वेल हो ही जाएगी। और सुनते रहिए।

0: कदम चूम लूँ के आँखें बिछा दूँ, करूँ क्या ये मेरे समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया।
1: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है और आज गाने की फरमाइश आई है सोहम

हाय हाय हाय क्या बात है सोम भाई, बहुत ही बढ़िया गाने की आपने फरमाइश की है। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन। चलिए फिर सोम भाई की फरमाइश पूरी करते हैं। आणि हो तुम्हाला सुद्धा जर कोणत्या गाण्याची फरमाइश पूर्ण करायची असेल तर नक्की तुम्ही मला डीएम करून कळवू शकता। डीएम करा आरजे अदनान या इंस्टा पेज वर किंवा व्हॉट्सअप करा 9359320080 पर 9359320080 पर। जल्दी से जल्दी आपकी फरमाइश बताए और सुनते रहे 90.8 FM।

फोन लगाने के बाद एक कॉलर ट्यून बजते और आपको ना तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में एंड साइबर क्राइम के बारे में बताया जाता है, तो ये क्यों? आपकी सुरक्षा के लिए, समझे? लेकिन हम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे. दिन ब दिन ना तो ये ऑनलाइन केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो एक बात याद रखिएगा कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये एक सब एक फ्रॉड है. ऐसा खुद साइबर क्राइम की तरफ से कहा गया है. पुलिस डिपार्टमेंट कह रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं. अगर आपके पास भी कुछ कॉल आ रहा हो और कह रहे हो कि यार आपको हमने डिजिटल अरेस्ट किया है, तो बच के रहिएगा. और सबसे पहले तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है. सामने वाला आपसे ना तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है और एड्रेस वगैरह सब कुछ मांगता है, तो बिल्कुल भी दीजिएगा मत. उन्हें कहना कि भाई पहली फुर्सत में निकल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो कह रहा हो कि यार हम आपको छोड़ देंगे, हमें इतनी इतनी रकम सेंड कीजिएगा, पैसे चाहिए हमें, तो आप डिजिटल अरेस्ट नहीं होंगे, तो पैसे भी बिल्कुल मत दीजिए. इंसान क्या करता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम से घबरा जाता है और उसके माइंड में आता है कि यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ते हुए इसको कुछ मैं पैसे दे दूंगा और ये मुझे छोड़ देगा. तो पैसा बिल्कुल ना दे और सबसे पहले जाकर 1930 ये नंबर डायल करें अपने फोन पर और आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन साइबर क्राइम तक पहुंचाइएगा. या तो फिर आप cybercrime.government.in यहां पर जाकर भी ना तो आपका केस दर्ज कर सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर याद रखिए 1930. सतर्क रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे. अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ फ्रॉड हो रहा हो तो इस नंबर पर कॉल करके हेल्प मांगिएगा. फ्रॉड से बच के रहिएगा क्योंकि एक बटन से ना तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है. तो बी सेफ, बी केयरफुल, स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM. On MGM 90.8 FM.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
0: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
2: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तरफे करियर गाइडेंस प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचे मग जाणून घ्या। लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:30 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371714124।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर। अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
5: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
6: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
5: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
6: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू

0: पेट्रोल डीजल एक तो मिल नहीं रहा और ऊपर से दाम भी इसके बढ़ रहे हैं। इस वजह से आम इंसान करे क्या, तो वो जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। आप सुन रहे हो आर जी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। सो आपके भी कुछ ऐसे सोच विचार हो गए गाड़ी खरीदने के, तो जरा सोचिए आपको पेट्रोल वाली लेनी है या फिर इलेक्ट्रिक वाली लेनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिपोर्ट में ऐसा सामने आया है कि 2026 में सबसे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तरफ जा रहे हैं और एक महीने के अंदर तकरीबन 13% सेल इसका बढ़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बस एक महीने में, मई महीने के अंदर की बात कर रहे हैं। ऐसा ही सामने देता है कि इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 2.30 लाख टप्पा पार करेल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रेज का वाढत है, सर्वात महत्वाचं म्हणजे फ्यूल की बचत होती है, ना पेट्रोल की जरूरत ना डीजल की जरूरत, घर पर ही आप इलेक्ट्रिसिटी से अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो और हर किलोमीटर 30 से 50 पैसे इसका रेट होता है, इतना ही बस खर्च लगता है। दूसरा है, सिटी के अंदर घूमने के लिए सबसे बेहतरीन है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा भी लोगों का मानना है। एंड मेंटेनेंस का भी खर्च इसको बहुत कम आता है, तो इसी रीजंस की वजह से एक महीने के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बढ़ चुका है। तो अगर आप भी कोई नई बाइक या व्हीकल लेना चाहते हो तो क्या प्रेफर करोगे, फ्यूल वाली या फिर इलेक्ट्रिक वाली, डीएम करके बताइएगा इंस्टा पर आर जी अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड,
1: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।

0: आज उस एक टॉपिक पर बात करेंगे हम, जिस पर अक्सर आज के वक्त में बिना बहुत से लोग हैं जो बात करने से कतराते हैं। दैट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RG अदनान आपके साथ है, एंड आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो इसी पर बात करने के लिए आज अपने साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम, MBBS MD मेडिसिन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन MGM हॉस्पिटल। वेलकम मैम।
1: थैंक यू अदनान, हेलो टू एवरीवन।
0: सो मैम, सवाल ये है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है?
1: मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का मेन पर्पस ये है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके अवेयरनेस बढ़ानी है और मिथ्स को तोड़ना है। आज भी बहुत सी लड़कियां, जैसे कि तुमने कहा, बहुत सी लड़कियां और महिलाएं पीरियड्स के बारे में ओपनली बात कर ही नहीं पाती। प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन, डिस्कम्फर्ट और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचाव होता है। ये दिन हमें एजुकेट करता है पीरियड्स, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई शर्म या टैबू की बात नहीं है इस बारे में। इसी पर्पस से, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दिन हम लोग न सिर्फ फीमेल्स को नहीं, मेल्स को भी ये बात बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो मेल का भी उतना इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे घर में फीमेल जो भी बहन, उनकी मम्मी या वाइफ, उनको इक्वली कम्फर्टेबल फील करवाना है, और इसके बारे में ऐसे शाय या टैबू फीलिंग नहीं देनी है किसी को भी। सो उसके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
0: यस एग्जैक्टली, उसके अवेयरनेस के लिए। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में अभी हमने जाना, और भी हम ढेर सारी बातें जानेंगे अबाउट पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कुछ देर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।

0: पीरियड्स को लेकर ना तो आज भी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स है और अलग अलग बातें भी लोग इसके बनाते हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। आरजी अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो अपने साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम, MBBS MD MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो मैम, पीरियड्स को लेकर सबसे कॉमन मिथ्स कौन से है जो दूर करना बहुत जरूरी है?
1: तो सबसे कॉमन मिथ जो ये है कि पीरियड्स के टाइम हम लोग किचन में नहीं जा सकते, रिलीजियस प्लेसेस पे एंट्री अलाउड नहीं होती या एक्सरसाइज करना अलाउड नहीं होता। तो इन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पीरियड्स एक टोटली नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि प्यूबर्टी पे अचीव होती है फीमेल्स में। सो हमें ये मिथ्स को तोड़ना है कि जैसे कि किचन में जाना अलाउड नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। रिलीजियस प्लेसेस पे अपने अपने बिलीव्स है बट ऐसे ऑब्लिगेटरी नहीं है, आप उसे ऐसे पनिश नहीं कर सकते हो ये चीज के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एक्सरसाइज अलाउड नहीं है। सो नहीं, ड्यूरिंग पीरियड्स आपको एक हेल्दी डाइट, एक प्रॉपर रूटीन और नॉर्मल एक्सरसाइज कम्प्लीटली करना चाहिए जो कि बिल्कुल भी सेफ होता है।
0: सही से कुछ मिथ्स होते हैं, इनको दूर करना बहुत जरूरी है। और मैम, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने का सही तरीका क्या है?
1: सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कपड़ा यूज नहीं करना, जो कि नॉर्मली अभी सिटीज में तो चलो ठीक है कि स्कूल में अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को पता है कि पैड्स यूज करना क्या है। बट जैसे आप रूरल एरियाज में जाओगे या फिर स्लम एरियाज में जाओगे, वहां पे वो लोग आज भी कपड़ा यूज करते हैं। दैट इज टोटली अनहाइजीनिक बिकॉज ना उसका प्रॉपरली वॉशिंग होता है, ना उसको प्रॉपरली सन एक्सपोजर मिलता है, तो उसमें जो भी इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तो पीरियड्स के टाइम पे हमें क्या करना है, एक तो सैनिटरी पैड यूज करने हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स जो कि हमें प्रॉपर तरीके से यूज करने हैं। पैड्स अगर यूज करें तो हर 4 से 6 घंटे में, अगर फ्लो है नहीं भी है तो एवरी 4 to 6 hours हमें पैड्स चेंज करने हैं। और जो हम लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं उसे हमें प्रॉपरली क्लीन और प्रॉपरली स्टरलाइज करके ही रीयूज करना है। दूसरा ये है कि प्राइवेट एरिया को क्लीन और ड्राई रखना है, हमेशा क्लीन वाटर और माइल्ड सोप से वॉश करना है और साथ ही यूज पैड जो को प्रॉपरली रैपिंग के साथ ही डिस्पोज करना है क्योंकि हमें एनवायरमेंट सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। सो ये सारी चीजों का हमें प्रॉपरली फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन ख्याल रखना है।
0: यस मैम। सो किस तरीके से प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो ये अभी हमने जाना, और भी हम ढेर सारी बातें जानेंगे लेकिन कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404494229।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

0: Let's talk about menstrual hygiene. You are listening MTM 90.8 FM. बंदे का नाम है अदनान और आज है menstrual hygiene day और हमारे साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम. So मैम, periods के time infection से बचने के लिए क्या precaution लेनी चाहिए?
1: So infection से बचने के लिए सबसे important है hygiene maintain करना. गीला या same pad वापस use नहीं करना है. वो हमें properly dispose करना है. Tight और synthetic undergarments हमें avoid करने हैं. Cotton या फिर breathable जो भी comfortable wear है वही use करने हैं. तो अगर आप 4-6 घंटे के बाद चेंज भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको इचिंग हो रही है, अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ज्यादा फ्लो जा रहा है या व्हाइटिश डिस्चार्ज है मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ, या फिर बैड ऑर्डर, तो या फिर सीवियर एब्डोमिनल पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर बर्निंग मिचुरेशन, मतलब यूरिन के टाइम पे आपको ऐसे बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, तो ये साइंस है इन्फेक्शन के. तो ऐसे टाइम में आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, बिकॉज अगर ये इन्फेक्शन ऊपर स्प्रेड होता है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, PID हो सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो सकता है, एंड ये सारी चीजें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अगर हम लोग उसे प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट ना करें.
0: सो कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना हो, ये अभी हमने जाना. सो ये सारी बातें याद रखिएगा गर्ल्स, और बहुत सारी बातें अभी हम जानेंगे कुछ देर में. तब तक स्टे ट्यून्ड.

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन 2026 एंड 2027। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।
5: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
6: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
5: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
6: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
7: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपती संभाजीनगर।
8: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
9: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
8: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी एंड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
9: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
8: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: वेलकम टू MGM 90.8 FM RJ अदनान आपके साथ है एंड आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं अपने साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो मैम, जिन लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उनमें थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डर होता है, समझ में नहीं आता ये क्या कुछ अपने चेंजेस हो रहे बॉडी में, तो ऐसे लड़कियों को आप क्या बताना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी?
1: पहले तो ये है कि फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो सब घबरा जाते हैं। सो घबराना नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी जो कि एक प्यूबर्टी अचीव होने के बाद हर फीमेल्स में आती है। सो अगर ये वो फीमेल सुन रही है जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जस्ट ही रिसेंट में एक्सपीरियंस किया है, तो आपको डरना नहीं है। आपको पहले क्या करना है कि जो आपके एकदम कंफर्टेबल पर्सन है जिससे आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, और आप जानते हो कि ये इंसान हमें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो उससे आपने जाके कंफर्टेबली बात करनी है। आपको क्या फील हो रहा है, क्या जानना है, वो पूरा बताना है और पूरा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, बिकॉज ये आपको आपके इसके आगे डेली हर मंथ आने ही वाले हैं एटलीस्ट आपके 40 to 50 ईयर्स के एज तक। सो ये एक महीने के लिए नहीं, आपके ये डेली साइकिल्स होने वाले हैं। सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब राइट इन्फॉर्मेशन इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आप आपके टीचर से पूछ सकते हो, स्कूल टीचर से, या आप जो डॉक्टर को बताते हो आप उनसे भी बात कर सकते हो।
0: अगर पीरियड्स पेन बहुत हो तो मेडिसिन लेना इज गुड और नॉट गुड?
1: देखो, थोड़ा बहुत पेन तो हर किसी को होता है हर साइकिल में। सो अगर पेन माइल्ड है मतलब आप टॉलरेट कर सकते हो, तो नॉर्मली चॉकलेट्स हो गए या फिर चाय कॉफी हो गया, हर किसी का अपना अपना अलग एक कम्फर्ट जोन होता है, या फिर हॉट वाटर बैग्स हो गए गर्म पानी की थैली, उससे आप कंफर्ट फील कर रहे हो तो ओके है। बट अगर पेन इतना है कि आप आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप एकदम बेड रिडन हो गए हो, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके पेन के लिए दवाई लेना है।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज हमने जानी अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। आई होप कि इससे अपने जितने लिसनर्स है उनको न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, और बस लड़कियां ही नहीं लड़कों को भी ना तो इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट,
1: थैंक यू सो मच,
0: स्टे ट्यून्ड।
2: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स BTech 4 ईयर्स आफ्टर HSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।

0: के धीरे धीरे वो मेरे जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से, MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है। बट यार मेरा इतना ही मानना है कि ओरिजिनल चीजों को ना तो उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो आप अभी गजल सुन रहे थे ना, ये गाना था
1: धीरे धीरे आप मेरे दिल के
0: 1995 में फिल्म आई थी बाजी, इसके अंदर यूज किया गया था, जिसको गाया था उदित नारायण जी ने और ये गाना लिखा था समीर जी ने। बट ये भी उसका ओरिजिनल क्रेडिट नहीं है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 1975 में, जहां पर फिल्म आई थी जीनत, जो कि पाकिस्तानी फिल्म थी, जिसके अंदर ये गजल गाई थी मेहंदी हसन साहब जी ने। और एक गजल लिखी थी तस्लीम फाजिल साहब ने। अब आपको लग रहा होगा इसको ओरिजिनल क्रेडिट मिल गया, बट नहीं, अभी और भी हम थोड़ा पीछे जाते हैं। दौर है 1966 का। पूरा गाना ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, वक्त के साथ थोड़े बहुत अंदर के लफ्ज चेंज किए गए हैं। और इस गाने को गाया था आशा भोसले जी ने और महेंद्र जी ने, और लिखा था कमर जलालाबादी जी ने। तो ये है उसका ओरिजिनल क्रेडिट। तो चलिए फिर रफ्ता रफ्ता ये गजल एंजॉय कीजिएगा, थोड़ी देर में वापस से आता है ये बंदा आपके खिदमत में। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घर गणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

0: आपकी बस 2 मिनट ही लूंगा, लेकिन इससे ना तो किसी की जिंदगी बच सकती है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबके पास ऑप्शंस है, एसी, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी सब कुछ है, पर कभी सोचा है उन छोटे परिंदों के बारे में जो दिन भर इस तेज धूप में उड़ते रहते हैं? ना कोई छत, ना कोई पानी का जग, बस आसमान और गर्मी, और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो लिटरली प्यास से मर जाते हैं। दोस्तों ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपने उठाया और मैंने उठाया, तो ऐसे हजारों परिंदे हैं जो कि बच सकते हैं इस गर्मी में और उनकी जान भी बच सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर या छत पर एक छोटी सी प्लेट या मिट्टी का बर्तन रखना है जिसमें पानी रखना है, और पॉसिबल हो तो थोड़ा दाना भी रख सकते हो जो कि परिंदे खा सकते हैं खाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी एक चिड़िया की जान बच जाएगी इस छोटे से कदम की वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम ना महंगा है ना मुश्किल है, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। हर किसी के घर के बाहर थोड़ी जगह होती है, छत होता है या तो फिर बालकनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ पर बस एक प्लेट में या छोटी कटोरी में भी आपने पानी रख दिया तो उस वजह से परिंदों की जिंदगी बच सकती है और इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो अपने घर के बाहर भी बाकी जानवरों के लिए एक बकेट में पानी रखकर। आपका छोटा इंसानियत का कदम किसी की जिंदगी बचाएगा, सो प्लीज यार इतना काम आप कीजिएगा और किसी की जान बचाइएगा। और सुनते रहना।
1: बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक है ना, बस चल रहा है भाई। What about you?
2: हाँ चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक है ना, हाँ ठीक है। और तेरा?

0: बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

सो आज के शो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पहेली पूछा था और उसके जवाब आप मुझे देने वाले थे। All is well, RJ and Ananka morning show, freshness like radio ka flow, on MGM 90.8 FM। तो पहले एक बार फिर से सुनाता हूँ मैं आपको कि एक ऐसी चीज जो बिना पैर के चलती है, बिना आवाज के बोलती है और बिना मुंह के हमेशा सच कहती है, बताओ क्या है? और इसका जवाब एकदम सिंपल है भाई, घड़ी। जी हाँ, घड़ी, क्योंकि वो बिना पैर के चलती भी है, बिना आवाज के बोलती भी है टाइम, और बिना मुंह के हमेशा सच बताती है, यानी कि एकदम करेक्ट टाइम। सो इसका जवाब है घड़ी। और आज के सवाल का एकदम सही सही सही जवाब दिया है किशोर माने ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन किशोर जी, आज आप विनर बन चुके हो। आपको हमारी तरफ से घड़ी ना से लेकिन एक स्पेशल गिफ्ट तो जरूर मिलेगा। सो किशोर जी ने जवाब वक्त पर दिया तो उन्हें हमने विनर घोषित किया। आप भी ऐसे जवाब देते रहिए और बाकी तो सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडेंस प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचे मग जाणून घ्या। लॉ एंट्रन्स एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM, आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371741264।
4: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
5: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
4: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
5: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर। अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
6: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
7: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
6: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
7: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
6: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
8: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. Arjay and Nanak morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है। मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। DM कीजिए का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

FM, साथ है तो बात है। एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स BTEC 4 इयर्स आफ्टर HSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिरको छत्रपति संभाजीनगर।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM University इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 and 2027। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर academic journey to the next level, this is your opportunity.
4: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.
5: ये सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
6: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942।
3: हर दिल की आवाज बने,
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है,
3: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे, अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात, MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठ स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडेंस प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचे मग जाणून घ्या। लॉ एंट्रन्स एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:00 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174124।
4: चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट RJ और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus and Sixidco, Chhatrapati Sambhajinagar.
1: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
2: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड। मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़, हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक थी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

की मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शाम का ये खुशनुमा वक्त दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा सुकून लेकर आता है। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा और अगर थोड़ा मुश्किल भी रहा हो तो कोई बात नहीं, ये शाम आपके लिए रिलैक्स करने के लिए है, मुस्कुराने के लिए है। कभी आपने नोटिस किया है शाम का आसमान कितना खास होता है? सूरज ढलते ढलते जैसे दिन की सारी थकान भी साथ ले जाता है और पीछे छोड़ जाता है हल्की सी ठंडक, थोड़ी सी शांति और ढेर सारी उम्मीदें। तो आज के इस प्यारी से शाम में चलिए खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं। एक कप चाय हो जाए या आपकी मन पसंदीदा कॉफी या बस अपने मन पसंदीदा गाने के साथ कुछ पल। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दिल को छू लेने वाले गाने, कुछ हल्की फुल्की बातें और शायद कुछ ऐसी यादें जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये शाम अब और भी खूबसूरत होने वाली है। चलते हैं पहले गाने की तरफ, ये गाना आपके दिल तक जरूर पहुंचेगा। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, और ऑफ कोर्स कुछ करेंगे बातें और भी खास। आज के इस प्यारे से शाम में बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल, सस्ती और हेल्दी आदत की, मूंगफली और गुड़ खाने की। जी हाँ, ये दोनों चीजें हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इनके फायदे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मूंगफली को अगर आप पावर ऑफ फ्रूट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इसमें प्रोटीन भरपूर होता है जो हमारी बॉडी को ताकत देता है और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है। वही गुड़ सिर्फ मीठा नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। इसमें आयरन होता है और जो खून को भी बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप मूंगफली और गुड़ को साथ में खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन और भी पावरफुल बन जाता है। यह आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है, और खासकर सर्दियों में तो ये शरीर के लिए गर्म रखने में बहुत मदद करता है। तो अगली बार जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे या कुछ मीठा खाने का मन करे तो चॉकलेट या जंक फूड की जगह एक छोटी सी मुट्ठी मूंगफली और थोड़ा सा गुड़ जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, टेस्ट भी मिलेगा और हेल्थ भी। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ी सेहत बनाती है, और यही हमारे शो का छोटा सा मैसेज है आज के लिए। इसी हेल्दी वाइब के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ शानदार गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर। नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
1: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
0: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या
1: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
4: कागद पेन नाही या वेळी, मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे, विवरण आणि

सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब तो सब कुछ बदल जाएगा या कुछ भी नहीं रहेगा, एक तरह से डू और डाई वाली सिचुएशन। ये पल थोड़ा डराता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन सच कहे तो यही पल हमें सबसे ज़्यादा मजबूत भी बनाता है। जब सामने मुश्किल खड़ी हो तो सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा रखना। डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस डर के आगे रुक जाना वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे अंदर उससे कई ज़्यादा ताकत होती है जितना हमने कभी सोचा था। कभी कभी फैसले मुश्किल होते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन याद रखिए हर बड़ी जीत के पीछे एक ऐसा ही मोमेंट होता है जहां आपने हिम्मत दिखाई होती है। तो अगर आप भी इस वक्त किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो बस एक कदम आगे बढ़ाइए, खुद पर भरोसा रखिए और दिल से कोशिश कीजिए। रिजल्ट जो भी हो, आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेंगे। और हाँ, अकेले मत समझिए खुद को, हम हमेशा आपके साथ हैं हर उस सफर में जहाँ आपको थोड़ी सी हिम्मत और मोटिवेशन की जरूरत है। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ ऐसे गाने जो आपको सुकून दिलाएंगे। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर, महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडेंस प्रोग्राम इन लॉ। लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचंय मग जाणून घ्या लॉ एंट्रन्स एक्झाम, हायर एज्युकेशन ॲडव्होकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:30 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371741264।
4: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
5: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
4: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
5: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपति संभाजीनगर, अंतर रुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपति संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8889 2688।
6: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
7: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
6: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
7: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
6: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कभी कभी ना कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, लेकिन फिर भी दिल तक पहुंच जाती है। एक नज़र, एक मुस्कान या फिर बस खामोशी, और सामने वाला समझ जाता है। ऐसी खूबसूरत फीलिंग्स को बहुत ही प्यारे तरीके से एक गाने में पिरोया गया है। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। ये उस सदी का सबसे खूबसूरत गाना था। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि असली कनेक्शन शब्दों से नहीं, एहसासों से होता है। जब दिल जुड़ते हैं तो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं और समझा सकते हैं। जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है, हम अपने लोगों से सब कुछ कह नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो हमें समझ जाते हैं। शायद यही रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात है, जहां साइलेंस भी एक लैंग्वेज बन जाती है। तो अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है जो आप कह नहीं पा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि उसे हमेशा शब्दों में ही पया किया जाए। कभी कभी एक छोटा सा जेस्चर, केयरिंग मोमेंट या बस साथ होना भी काफी होता है। और इसी खूबसूरत एहसास को महसूस करने के लिए चलिए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाला गाना, जो हमें याद दिलाता है कि प्यार और एहसास शब्दों से नहीं, उससे कई ज्यादा होते हैं। सुनते हैं कुछ अमेजिंग सॉन्ग्स ओनली ऑन एमजीएम 94.8 एफएम। साथ है तो बात है।

मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ इन द शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। आज की शाम में बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, रेगुलर पीरियड्स। पीरियड्स का आना, वो भी सही समय पे, कितना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जब ये टाइम पर और रेगुलर आते हैं तो ये हमारे शरीर का हेल्दी होने का एक अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि हार्मोन्स बैलेंस में है और बॉडी सही तरह से काम कर रही है। रेगुलर पीरियड्स से फर्टिलिटी यानी भविष्य में माँ बनने की क्षमता के बारे में भी पॉजिटिव संकेत मिलता है। साथ ही ये हमें अपने शरीर को बेहतर समझने में मदद करता है, जैसे एनर्जी लेवल, मूड चेंजेस और ओवरऑल हेल्थ। इसके अलावा जब साइकिल रेगुलर होती है तो हम अपने रूटीन को भी बेहतर प्लान कर सकते हैं, चाहे वो वर्क हो, ट्रैवल हो या सेल्फ केयर। लेकिन अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो, बहुत दर्द हो या लंबे समय तक ना आए तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे में किसी डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये किसी अंडरलाइंग इशू का संकेत हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात, इस टॉपिक पर बात करने में हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अपने शरीर की सुनिए, खुद का ख्याल रखिए और हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। अब इसे इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं शो में और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है और वो बात है इररेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित पीरियड्स और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं इस बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब पीरियड्स समय पर नहीं आते, बहुत ज्यादा गैप होता है या कभी बहुत जल्दी और कभी बहुत देर से आते हैं तो ये बॉडी के हार्मोन बैलेंस का संकेत हो सकते हैं। इररेगुलर पीरियड्स का असर सिर्फ साइकिल तक सीमित नहीं रहता, इससे मूड स्विंग्स, थकान, एक्ने यानी पिंपल्स और कभी कभी वेट चेंजेस जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। कई बार ये स्ट्रेस, गलत खान पान या लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। इसके अलावा अगर लंबे समय तक पीरियड्स इररेगुलर रहे तो फ्यूचर में फर्टिलिटी यानी कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब साइकिल रेगुलर नहीं होती तो हमें अपने शरीर के सिग्नल समझने में मुश्किल भी बहुत होती है और कई बार हम किसी अंडरलाइंग हेल्थ इशू को पहचान नहीं पाते। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सही समय पर ध्यान देना और सबसे बड़ा सलूशन तो यही है कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है और मदद भी करती है। तो दोस्तों, अपने शरीर की सुनिए, छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए क्योंकि हेल्दी रहना सबसे जरूरी है। अब इसे अवेयरनेस के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक शानदार गाना। बनी रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 94.8 FM। साथ है तो बात है।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।
3: ए

0: है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज की शाम में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात करनी है मुझे, और वो बात है अपने पीरियड साइकिल को ऑब्जर्व करना। जी हाँ, छोटी सी आदत लेकिन सबसे बड़ी फायदेमंद। अक्सर हम अपने बिजी रूटीन में अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने पीरियड्स की डेट, ड्यूरेशन और सिम्टम्स को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप अपने हेल्थ के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे आपका साइकिल रेगुलर है या नहीं, पेन कितना होता है, मूड में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब चीज़ें आपको आपके बॉडी पैटर्न को समझने में मदद करती है। और जब आपको अपने शरीर की समझ होती है तो आप सही समय पर सही डिसीजन भी ले पाते हैं अपने लिए। आजकल तो मोबाइल ऐप्स या सिंपल कैलेंडर की मदद से ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। बस हर महीने थोड़ा सा नोट करिए और धीरे धीरे आपको अपने साइकिल का पूरा पैटर्न समझ आने लगेगा। और अगर आपको कोई अनयूजुअल चेंजेस दिखे, जैसे बहुत ज़्यादा डीले, एक्सेसिव पेन या फ्लो, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। समय पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सेल्फ केयर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होता है, और अपने साइकिल को समझना उसी का एक हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए अपनी बॉडी को समझने की। अब इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ अमेजिंग सॉन्ग्स ओनली ऑन एमजीएम रेडियो पॉइंट 8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
3: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
4: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
5: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
6: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
5: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
6: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।
7: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
8: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
7: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
8: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
9: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
10: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
9: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
10: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
11: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: देखते ही देखते आज का हमारा ये खूबसूरत सफर यहीं तक पहुंच गया है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन MG90.FM। उम्मीद है कि आपने आज के इस शो को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने आपके साथ इसे बिताया। बातें, गाने या फिर ये प्यारे प्यारे लम्हे सब कुछ मिलकर इस शाम को और भी खास बना गए हैं। जिंदगी की भागदौड़ में छोटे छोटे मोमेंट्स ही रिफ्रेश करते हैं हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं। और हमारी तो बस इतनी सी कोशिश रहती है कि हम हर दिन आपको खुश कर सके, हर शाम आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल जरूर ला सके, या किसी गाने ने आपकी यादों को ताज़ा किया है तो समझिए हमारा साथ सफल रहा। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन ये अलविदा सिर्फ आज के लिए। हम फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय, इसी जगह, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए गानों के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों के साथ वक्त बिताइए और जिंदगी के हर पल को दिल से जीते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आपसे लेती हूँ विदा। टेक केयर, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड टू MG90.FM। साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 years after HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT।

फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सराखों पर। MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है और आज गाने की फरमाइश आई है सोहम सबनिस की तरफ से।

हाय हाय हाय, क्या बात है सोम भाई, बहुत ही बढ़िया गाने की आपने फरमाइश की है। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन। चलिए फिर सोम भाई की फरमाइश पूरी करते हैं। आणि हो, तुम्हाला सुद्धा जर कोणत्या गाण्याची फरमाइश पूर्ण करायची असेल तर नक्की तुम्ही मला डीएम करून कळवू शकता। डीएम करा आरजे अदनान या इंस्टा पेज वर किंवा व्हॉट्सअप करा 9359320080 पर 9359320080 पर। जल्दी से जल्दी आपकी फरमाइश बताए और सुनते रहे MGM 90.8 FM।

फोन लगाने के बाद एक कॉलर ट्यून बजती है और आपको ना तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में एंड साइबर क्राइम के बारे में बताया जाता है, तो ये क्यों? आपकी सुरक्षा के लिए, समझे? लेकिन हम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे. दिन ब दिन ना तो ये ऑनलाइन केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो एक बात याद रखिएगा कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये एक सब एक फ्रॉड है. ऐसा खुद साइबर क्राइम की तरफ से कहा गया है. पुलिस डिपार्टमेंट कह रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं. अगर आपके पास भी कुछ कॉल आ रहा हो और कह रहे हो कि यार आपको हमने डिजिटल अरेस्ट किया है, तो बच के रहिएगा. और सबसे पहले तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है. सामने वाला आपसे ना तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है और एड्रेस वगैरह सब कुछ मांगता है, तो बिल्कुल भी दीजिएगा मत. उन्हें कहना कि भाई पहली फुर्सत में निकल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो कह रहा हो कि यार हम आपको छोड़ देंगे, हमें इतनी इतनी रकम सेंड कीजिएगा, पैसे चाहिए हमें, तो आप डिजिटल अरेस्ट नहीं होंगे, तो पैसे भी बिल्कुल मत दीजिए. इंसान क्या करता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम से घबरा जाता है और उसके माइंड में आता है कि यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ते हुए इसको कुछ मैं पैसे दे दूंगा और ये मुझे छोड़ देगा. तो पैसा बिल्कुल ना दे और सबसे पहले जाकर 1930 ये नंबर डायल करें अपने फोन पर और आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन साइबर क्राइम तक पहुंचाइएगा. या तो फिर आप cybercrime.government.in यहां पर जाकर भी ना तो आपका केस दर्ज कर सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर याद रखिए 1930. सतर्क रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे. अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ फ्रॉड हो रहा हो तो इस नंबर पर कॉल करके हेल्प मांगिएगा. फ्रॉड से बच के रहिएगा, क्योंकि एक बटन से ना तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है. तो बी सेफ, बी केयरफुल, स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM.

पेट्रोल डीजल एक तो मिल नहीं रहा और ऊपर से दाम भी इसके बढ़ रहे हैं। इस वजह से आम इंसान करे क्या, तो वो जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। सो आपके भी कुछ ऐसे सोच विचार हो गए गाड़ी खरीदने के, तो जरा सोचिए आपको पेट्रोल वाली लेनी है या फिर इलेक्ट्रिक वाली लेनी है। ये मैं कह रहा हूँ, एक रिपोर्ट में ऐसा सामने आया है कि 2026 में सबसे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तरफ जा रहे हैं और एक महीने के अंदर तकरीबन 13% सेल इसका बढ़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बस एक महीने में, मई महीने के अंदर की बात कर रहे हैं। आणि असंही सांगण्यात येत आहे की इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 2,30,00,000 टप्पा पार करेल। आणि इलेक्ट्रिक व्हीकलचं क्रेज का वाढतंय, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे फ्यूल की बचत होती है ना, पेट्रोल की जरूरत ना डीजल की जरूरत, घर पर ही आप इलेक्ट्रिसिटी से अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो और हर किलोमीटर 30 से 50 पैसे इसका रेट होता है, इतना ही बस खर्च लगता है। दूसरा है, सिटी के अंदर घूमने के लिए सबसे बेहतरीन है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा भी लोगों का मानना है। एंड मेंटेनेंस का भी खर्च इसको बहुत कम आता है, तो इसी रीजंस की वजह से एक महीने के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बढ़ चुका है। तो अगर आप भी कोई नई बाइक या व्हीकल लेना चाहते हो तो क्या प्रेफर करोगे, फ्यूल वाली या फिर इलेक्ट्रिक वाली, डीएम करके बताइएगा इंस्टा पर RJ अदनान इंस्टा पेज पर। एंड स्टे

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहां मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर। महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च तर्फे करियर गाइडन्स प्रोग्राम इन लॉ फील्ड मध्ये करियर करायचे मग जाणून घ्या। लॉ एंट्रन्स एग्जाम, हायर एज्युकेशन एडवोकेसी, कॉर्पोरेट लॉ, ज्युडिशरी आणि करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, तज्ञ आणि प्राध्यापकांशी थेट संवाद साधण्याची सुवर्ण संधी। शुक्रवार 29 मे 2026 2:30 PM आइन्स्टाईन हॉल, छत्रपती संभाजीनगर। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल ऑन 9371174124।
4: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
5: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
4: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
5: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर। अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
6: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
7: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
6: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
7: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
8: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे हम, जिस पर अक्सर आज के वक्त में बिना बहुत से लोग जो बात करने से कतराते हैं, दैट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RG अदनान आपके साथ है, एंड आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो इसी पर बात करने के लिए आज अपने साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम, MBBS MD मेडिसिन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन MGM हॉस्पिटल। वेलकम मैम।
1: थैंक यू अदनान, हेलो टू एवरीवन।
0: सो मैम, सवाल ये है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है?
1: मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का मेन पर्पस ये है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके अवेयरनेस बढ़ानी है और मिथ्स को तोड़ना है। आज भी बहुत सी लड़कियां, जैसे कि तुमने कहा, बहुत सी लड़कियां और महिलाएं पीरियड्स के बारे में ओपनली बात कर ही नहीं पाती। प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन, डिस्कम्फर्ट और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचाव होता है। ये दिन हमें एजुकेट करता है पीरियड्स, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई शर्म या टैबू की बात नहीं है इस बारे में। इसी पर्पस से जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दिन हम लोग सिर्फ फीमेल्स को नहीं, मेल्स को भी ये बात बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो मेल का भी उतना इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे घर में फीमेल जो भी बहन, उनकी मम्मी या वाइफ, उनको इक्वली कम्फर्टेबल फील करवाना है, और इसके बारे में ऐसे शाय या टैबू फीलिंग नहीं देनी है किसी को भी। सो उसके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
0: यस एग्जैक्ट, उसके अवेयरनेस के लिए। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में अभी हमने जाना, और भी हम ढेर सारी बातें जानेंगे अबाउट पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कुछ देर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: पीरियड्स को लेकर ना तो आज भी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स है और अलग अलग बातें भी लोग इसके बनाते हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। आरजी अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो अपने साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम, MBBS MD MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो मैम, पीरियड्स को लेकर सबसे कॉमन मिथ्स कौन से है जो दूर करना बहुत जरूरी है?
1: तो सबसे कॉमन मिथ जो ये है कि पीरियड्स के टाइम हम लोग किचन में नहीं जा सकते, रिलीजियस प्लेसेस पे एंट्री अलाउड नहीं होती या एक्सरसाइज करना अलाउड नहीं होता। तो इन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पीरियड्स एक टोटली नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि प्यूबर्टी पे अचीव होती है फीमेल्स में। सो हमें ये मिथ्स को तोड़ना है कि जैसे कि किचन में जाना अलाउड नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। रिलीजियस प्लेसेस पे अपने अपने बिलीव्स है बट ऐसे ऑब्लिगेटरी नहीं है, आप उसे ऐसे पनिश नहीं कर सकते हो ये चीज के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एक्सरसाइज अलाउड नहीं है, सो नहीं, ड्यूरिंग पीरियड्स आपको एक हेल्दी डाइट, एक प्रॉपर रूटीन और नॉर्मल एक्सरसाइज कम्प्लीटली करना चाहिए जो कि बिल्कुल भी सेफ होता है।
0: ऐसे कुछ मिथ्स होते हैं, इनको दूर करना बहुत जरूरी है। और मैम, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने का सही तरीका क्या है?
1: सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कपड़ा यूज नहीं करना है, जो कि नॉर्मली अभी सिटीज में तो चलो ठीक है कि स्कूल में अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को पता है कि पैड्स यूज करना क्या है। बट जैसे आप रूरल एरियाज में जाओगे या फिर स्लम एरियाज में जाओगे, वहां पे वो लोग आज भी कपड़ा यूज करते हैं, दैट इज टोटली अनहाइजीनिक बिकॉज ना उसका प्रॉपरली वॉशिंग होता है, ना उसको प्रॉपरली सन एक्सपोजर मिलता है, तो उसमें जो भी इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पीरियड्स के टाइम पे हमें क्या करना है, एक तो सैनिटरी पैड यूज करने हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स जो कि हमें प्रॉपर तरीके से यूज करने हैं। पैड्स अगर यूज कर रहे हैं तो हर 4 से 6 घंटे में, अगर फ्लो है नहीं भी है तो एवरी 4 to 6 hours हमें पैड्स चेंज करने हैं। और जो हम लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं उसे हमें प्रॉपरली क्लीन और प्रॉपरली स्टरलाइज करके ही रीयूज करना है। दूसरा ये है कि प्राइवेट एरिया को क्लीन और ड्राई रखना है, हमेशा क्लीन वाटर और माइल्ड सोप से वॉश करना है और साथ ही यूज पैड जो को प्रॉपरली रैपिंग के साथ ही डिस्पोज करना है क्योंकि हमें एनवायरमेंट सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। सो ये सारी चीजों का हमें प्रॉपरली फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन ख्याल रखना है।
0: यस मैम। सब किस तरीके से प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो ये अभी हमने जाना, और भी हम ढेर सारी बातें जानेंगे लेकिन कुछ ही देर में। तब तक स्टे

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। बंदे का नाम है अदनान और आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे और हमारे साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम। सो मैम, पीरियड्स के टाइम इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए?
1: सो इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना। गीला या सेम पैड वापस यूज नहीं करना है, वो हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना है। टाइट और सिंथेटिक अंडर गार्मेंट्स हमें अवॉइड करने हैं। कॉटन या फिर ब्रीदेबल जो भी कम्फर्टेबल वेयर है वही यूज करने हैं। तो अगर आप 4 से 6 घंटे के बाद चेंज भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको इचिंग हो रही है, अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ज्यादा फ्लो जा रहा है या व्हाइटिश डिस्चार्ज है मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ, या फिर बैड ऑर्डर तो, या फिर सीवियर एब्डोमिनल पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर बर्निंग सेचुरेशन, मतलब यूरिन के टाइम पे आपको ऐसे बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, तो ये साइंस है इन्फेक्शन के। तो ऐसे टाइम में आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, बिकॉज अगर ये इन्फेक्शन ऊपर स्प्रेड होता है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, PID हो सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो सकता है, एंड ये सारी चीजें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अगर हम लोग उसे प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट ना करें।
0: सो कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना हो, यही अभी हमने जाना। सो ये सारी बातें याद रखिएगा गर्ल्स, और बहुत सारी बातें अभी हम जानेंगे कुछ देर में, तब तक स्टे ट्यून।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942।
3: कागद पेन नाही या वेळी मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे, विवरण आणि

0: वेलकम टू MGM 90.8 FM RJ अदनान आपके साथ है एंड आज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं अपने साथ है डॉक्टर नीलोफर पटेल मैम फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो मैम, जिन लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उनमें थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डर होता है, समझ में नहीं आता ये क्या कुछ अपने चेंजेस हो रहे बॉडी में, तो ऐसे लड़कियों को आप क्या बताना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी?
1: पहले तो ये है कि फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो सब घबरा जाते हैं। सो घबराना नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी जो कि एक प्यूबर्टी अचीव होने के बाद हर फीमेल्स में आती है। सो अगर ये वो फीमेल सुन रही है जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जस्ट ही रिसेंट में एक्सपीरियंस किया है, तो आपको डरना नहीं है। आपको पहले क्या करना है कि जो आपके एकदम कंफर्टेबल पर्सन है जिससे आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और आप जानते हो कि ये इंसान हमें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो उससे आपने जाके कंफर्टेबली बात करनी है। आपको क्या फील हो रहा है, क्या जानना है, वो पूरा बताना है और पूरा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, बिकॉज ये आपको आपके इसके आगे डेली हर मंथ आने ही वाले हैं एटलीस्ट आपके 40 to 50 ईयर्स के एज तक। सो ये एक महीने के लिए नहीं, आपके ये डेली साइकिल होने वाले हैं। सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब राइट इन्फॉर्मेशन इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आप आपके टीचर से पूछ सकते हो, स्कूल टीचर से, या आप जो डॉक्टर को बताते हो आप उनसे भी बात कर सकते हो।
0: अगर पीरियड्स पेन बहुत हो तो मेडिसिन लेना इज गुड और नॉट गुड?
1: देखो, थोड़ा बहुत पेन तो हर किसी को होता है हर साइकिल में। सो अगर पेन माइल्ड है मतलब आप टॉलरेट कर सकते हो, तो नॉर्मली चॉकलेट्स हो गए या फिर चाय कॉफी हो गया, हर किसी का अपना अपना अलग एक कम्फर्ट जोन होता है, या फिर हॉट वाटर बैग्स हो गए गर्म पानी की थैली, उससे आप कंफर्ट फील कर रहे हो तो ओके है। बट अगर पेन इतना है कि आप आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप एकदम बेड रिडन हो गए हो, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके पेन के लिए दवाई लेना है।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हमने जानी अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। आई होप कि इससे अपने जितने लिसनर्स है उनको न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, और बस लड़कियां ही नहीं लड़कों को भी ना तो इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। All

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM University इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।

0: कि धीरे धीरे वो मेरे जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से, MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है। बट यार मेरा इतना ही मानना है कि ओरिजिनल चीजों को ना तो उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो आप अभी गजल सुन रहे थे ना, ये गाना था
1: धीरे धीरे आप मेरे दिल के
0: 1995 में फिल्म आई थी बाजी, इसके अंदर यूज किया गया था, जिसको गाया था उदित नारायण जी ने और ये गाना लिखा था समीर जी ने। बट ये भी उसका ओरिजिनल क्रेडिट नहीं है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 1975 में, जहां पर फिल्म आई थी जीनत, जो कि पाकिस्तानी फिल्म थी, जिसके अंदर ये गजल गाई थी मेहंदी हसन साहब जी ने। और ये गजल लिखी थी तस्लीम फाजिल साहब ने। अब आपको लग रहा होगा इसको ओरिजिनल क्रेडिट मिल गया, बट नहीं, अभी और भी हम थोड़ा पीछे जाते हैं। दौर है 1966 का। पूरा गाना ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, वक्त के साथ थोड़े बहुत अंदर के लफ्ज चेंज किए गए हैं। और इस गाने को गाया था आशा भोसले जी ने और महेंद्र जी ने, और लिखा था कमर जलालाबादी जी ने। तो ये है उसका ओरिजिनल क्रेडिट। तो चलिए फिर रफ्ता रफ्ता ये गजल एंजॉय कीजिएगा, थोड़ी देर में वापस से आता है ये बंदा आपके खिदमत में। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MCM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
2: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942।
1: तुझ आवाज़ें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
0: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज़ है MGM 90.8 FM की, जहाँ हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
0: MGM 90.8 FM,
1: साथ है

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM, साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
4: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशंस 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
3: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
4: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 एंड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। अप्लाय नाउ, विजिट www.admissions.mgmu.ac.in/phd और कॉल ऑन 9067612000।
5: कागद पेन नाही या वेळी मोबाईलचा नवा उपक्रम आहे, विवरण आणि

0: जरूरत है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट MGMU.ac.in और कॉन्टैक्ट 937

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: मुझे सुन।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM
3: साथ है तो बात है।
4: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कल

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।